जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे कम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले

जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।

तैके सिंह कनेचुन मारे खोरकी मारिया रोज रीश बहु पांत पदारे जेड़े रिच सन रोज सन जंगली जानवर बगियार सन चुन चुन के उन्हां नूं घेर के शिकार कीता। कहिंदे ने जदों असीं अजे उस धरती ते बैठ के रब दी सिफत ते खूनखार जीवां दा मुकाबला करदे पए सां उस वक्त फतेह शंभ कोपा तब राजा लोह परा हमसो बिन काजा। कहिंदे ने जिस फतेह शाह दी सुलह कराई बगैर मतलब तो कहिंदे ने गुस्से विच आ गया मजबूरन कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह मैनू उत्थे जंग करन वास्ते तैयार होना पिया। इथों मुड बजदा पंगाणी दे युद्ध दा ध्यान देना कि फतेह शाह मैं अर्ज कीती ओदी बच्ची भीम चंद दे लड़के नाल मंगनी होई बरात गई बाई धार दे राजे भीम चंद दी बरात विच शामिल होए बच्चे दी पौंटा साहिब दे घाट तो इन्हां ने निकलना सी। हजूर ने 12 दिनां विच पौंटा साहिब दा किला तैयार कीता सी। जिन्ने भी सिख सन इत्थे आए इसे पौंटा साहिब दी धरती ते संडौरे पिंड दा रहण वाला पीर बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह दे चरणां विच जुड़िया जिहदा असली नाम सी सैयद बदरुद्दीन। सैयद बदरुद्दीन ने मत्था टेकिया ते पहला सवाल कीता सी गुरु गोबिंद राय जी नूं अल्लाह नाल मिलाप हो सकदा है। साहिब ने कहा एक खिन दे अंदर। कहिंदा फिर किवें महाराज? कहिंदे ने जदों दूश दवाई दवैश दा दुई दा हौमे दा पर्दा उतर जाए पीर जी उदों इस तरह मिलाप हुंदा है जिवें रात तो बाद दिन चढ़ जांदा है। एक खिन लगदा है इत्थे पीर गुरु गोबिंद सिंह दे चरणां दा मुरीद बन गया सी। इसे पौंटा साहिब दी धरती ते पीर बुद्धू शाह ने औरंगजेब दे कढे होए 500 जिहड़े पठान सन इन्हां विच्चों 5 जरनैल सन हयात खान निजाबत खान भीखन खान उमर खान काले खान ये 5 जरनैल ते 500 इन्हां दे साथी साहिब गुरु गोबिंद सिंह दे चरणां विच पीर बुद्धू शाह लै के आया सी। कहिंदा महाराज इन्हां पठाणा नूं रोटी दा टुकड़ा नहीं मिलदा। औरंगजेब ने अपने दरबार विच्चों कढ दित्ता है जे कृपा करे औरंगजेब दे धक्कियां नूं कोई नहीं रखदा ते मैनूं पता है तू इन्हां गरीबां दी बांह पड़ेगा। साहिब गुरु गोबिंद सिंह ने 500 पठान पौंटा साहिब भर्ती किया। एक एक जरनैल की तनखा सी रोज की 5 रुपये ते एक सिपाही की तनखा सी रोज का 1 रुपया। ये उस वेले की घटना है। अर्ज करा 500 पठान ते 500 उदासी साधु वह भी पौंटे पहुंच गए। उन्होंने देखा यमुना का नरा किनारा है ठंडी हवा ते गुरु का लंगर छकन बहुत ज्यादा सारा दिन लंगर पानी छकना ठंडे रुखां की शाम मरनी 500 उदासी नागा साधु उत्थे पहुंच गया। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जदों पौंटा साहिब टिके भीम चंद दे पुत्र की बरात निकलनी सी पौंटा साहिब दे घाट तो ते भीम चंद ने बंगाड़ के एक गल कही। कहिंदा गुरु चार कु बंदे कट्ठे करके किले बनाई बैठा है मैं पुत्र की बरात उदों लै के फतेह शाह दे घर चुकना जदों गुरु गोबिंद सिंह दे पौंटे नूं उजाड़ के मैं तहस नहस करांगा ते गुरु गोबिंद सिंह नूं मैं जमलोक पहुंचा देवांगा। उहदा मतलब सी कि बिरादरी मेरी इकट्ठी हुई है राजे मेरे इकट्ठे हुए ने लंघदियां लंघदियां पौंटे नूं उजाड़ के गुरु गोबिंद सिंह नूं खत्म कर देंगा। साहिब नूं खबर मिल गई। हजूर ने उस घाट ते अपने सिख तैनात कर दिते ते भीम चंद ने पत्रिका भेजी मैं पौंटे नेड़े निकलना ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने जे तू शुद्ध भावना नाल निकलदा तेनूं जी आया भी कहिंदा पर जेड़ी मन विच तू बिरती लै के आया जितना मर्जी जोर ला लै मैं तेरा एक बंदन बंदा भी इस घाट तो निकल नहीं देना। उस वक्त हजारां की तादाद विच पहाड़िए राजे ते कमाल की गल पहली जंग गुरु गोबिंद सिंह की होई भी उन्हां नाल जिन्हां की खातर गुरु गोबिंद सिंह का दादा गुरु हरगोबिंद साहिब इन्हां राजपूत राजिआं नूं ग्वालियर के किले विचों मुक्त करा के लाया। कमाल की गल पहली जंग भी उन्हां नाल होई जिन्हां की खातर तिलक जन्यू राखा प्रभदाका किनो बड़ो कलू में साका जिन्हें एडा वड्डा साका कर दिता बापू का सिर दे दिता पहली जंग लड़न वास्ते वह लोग इकट्ठे हो के आ गए। साहिब गुरु गोबिंद सिंह ने कहा निकलन नहीं देना। भीम चंद अंदरों डर गया। कई ने कहा हल्ला करो किसी ने कहा चलो रहन दो किते खुशी का वेला है नुकसान ना हो जाए। फिर इन्हें अखीर से अपना एक पम्मा परोत असी पढ़ने अक्सर इतिहास में उन्होंने भेजिया कहिंदा तुसी मैनू तो नहीं बरात तो नहीं घट्टो घट मेरे पुत्र नूं निकलन दिओ अजमेर चंद नूं नहीं ते साहे वाला दिन निकल जाने। साहब ने कहा ठीक है परवान केवल

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर

0: ऐसा इन प्रेम धर के
1: गुरबाणी कर पाठ
0: गुरबाणी का पाठ कर दिया
1: होके उल्टा ही पुत्र जब
0: राम राम इतापी निकी मुसलमान की देवी मान की कहता
1: त्याग दियो लख साठ
0: मूर्खताई है समझ करके गुरु नानक की बाणी उल्टाई है छड़का मारा राम राम।

प्रचार किया अगे इस प्रकार तरीके चलद चलद बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी हुए।

गया। उस वेले इन्हें 17 लड़कियां 17 लड़कियां ने बंदी बना के अपने हरम विच रखने वास्ते लेके गया। हरम की चीज है? एक राजे दियां व्याहियां हुई राणियां होंदियां सन, वह राजे के महलों में रहिंदियां सन। एक राजे की ऐशो शिरत वास्ते लड़कियां होंदियां सन, वह होंदियां तां राजे की जिंदगी वास्ते सन, पर उन्हां नूं महल्लां विच रहण दा हक नहीं सी हुंदा। जिहड़ी थां ते उन्हां नूं रखिया जांदा सी उस थां दा नां सी हरम, ते हरम दे विच पैदा होए बच्चे दा नां, खिमा करियो, जे हरामी हुंदा सी, हरामी शब्द इत्थों बणिया, मैनूं खिमा करियो, क्योंकि पिछोकड़ ते आपां सांझा करना पवेगा ना। जिहदे पिता दा नां ना होवे, राजा उहनूं अपने नां नहीं सी दे सकदा, अपना नां नहीं सी बापू होण दे नाते दे सकदा, वापस परता। 17 लड़कियां ने हरम च रखण वास्ते लेके गया, 400 लड़कियां गोलियां बना के लेके गया। याद रखियो जे इस वेले इन्हें करीब सारे हिंदुस्तान लुट के 17 करोड़ रुपया इन्हें इकट्ठा किया। 28,000 गड्ढे, बैल, घोड़े, हाथी इत्यादिक इहदी फौज का एक भी बंदा एम शाह अबदाली तो बिना एडी फौज का एक भी बंदा किसी सवारी दे उत्ते नहीं सी। सारे दे सारे ओ जितने लोग सन ओ सारे दे सारे इस पापी ने ओ पैदल तोड़ के उन्हें उत्ते समान लद्दिया होया सी लुट दा। मैं थोड़ा जा फिर पिछे की गल करनी चाहना। मुगलानी बेगम जदों तख्त ते बैठी सी इन्हें यह तो पता लग ही चुके भी उहदे सद्दे उत्ते एम शाह अबदाली आया सी 1757 विच, ते इसलिए उन्हें आप जा जाके इन्हें घर लुटवाए। जे भी ए घर अमीर ने, इस घर विच बहुत सियाणी लड़की रहिंदी है। मुगलानी बेगम ने पापण ने आप ए पाप करवाया, ते जांदा होया अहम शाह अबदाली उन्हें धी कह के गया सी। रज के लुटन तो बाद विच ए जदों वापस परत रहा है, कुछ दिन रुके लाहौर, ते उस तो बाद विच जो वापस परत रहा है, एक हजे इत्थों दिल्ली तो वापस परत रहा है, सरहंद दे नेड़े एक नगर है सनौर। हुण इहदी कोई बाली पुछनी, पटियाला रोड ते है, थोड़ा जा मेन रोड तो पिछे हट गया अजकल, हुण उहदी कोई पुछनी बेचारी, पर उत्थे इक सिक्खी दी याद है बड़ी प्यारी। सनौर दे विच इतनी धन दौलत नूं लुट के जिदे अगे महाराजे भी गिड़गड़ा के पैरां विच डिगदे सन, जिदे अगे महाराजे भी तोहफे लिया के रखदे सन, जिदे अगे महाराजे भी अपनियां धीआं दे डोले लिया के रखदे सन, तुसीं देखो किड्डी अणखी बात होवेगी। इहनूं सनौर दे कोल जांदे होए इहनूं सिखां दे जथे ने चंगी तरह लुटिया, चंगी तरह लुटिया। इत्थों तक दा जिक्र है कि शायद इहदी लुट दा कुछ हिस्सा जा एक एक जा दूजा हिस्सा, तीजा हिस्सा, इना हिस्सा एरी जायदाद दा, एरे धन पदार्थ दा सिखा ने लुट लिया। पर इन्हें अहमद शाह ने उस वेले सिखा नाल कोई गल सांझी नहीं कीती, क्योंकि दिलों ए हमेशा डरदा रहा है। दिलों डरदा रहा है, उहदा कारण सिर्फ एहो सी भई इन्हें नादर शाह दे वेले जदों ए नाल आया सी, इन्हें सिखां दियां बहादरियां देखियां होईयां सन। अगे तुरं गल हुणे जांदा होया अपने पुत्र तैमूर शाह नूं, ते नाल इहदा जरनैल है उहदा नां है जहान खान, इसे ने अगे दरबार साहिब ढाया सी। इहनूं इक वचन करके गया भई तुसीं किसे तरह सिखां दा खुरा खोज मिटाओ। हुण इह जदों वापस आए उहनूं छड के चनाब दे किनारे ते वापस परतदे आ, सब तो पहला जहान खान ने आके करतारपुर साहिब नूं अग लाई। मैनूं आस नहीं भी आपां कदे करतारपुर साहिब दे बारे च सुनिया होवे। दो करतारपुर साहिब ने, एक गुरु नानक साहिब जी दा वसाया होया 1504 या कई 1507 कहिंदे ने, करतारपुर साहिब गुरु नानक साहिब जी दा वसाया, वह पाकिस्तान विच है। दूसरा जिहड़ा करतारपुर साहिब है
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ

गुरु स्वारियों जी, असीसा बख्शो, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय तो सिख इतिहास दे विचारां दस तुहाडे नाल सांझियां करदा रहा सी। अज आप कोशिश करनी है गुरु साहब कृपा करन उन्हें 1800 तक आप विचार कर सके। मिसलां दी गल दस तुहाडे नाल सांझी कर रहा सी। मिसलां दे जिन्ने भी मुखिए सन वह बुजुर्ग हो गए। पहली गल यह हुई भी वह बुजुर्ग होने के नाते थोड़े कमजोर हो गए, वह गल ना रह सकी। दूजी गल, जेड़े लोग किसी वेले अमदाली की शानी पढ़ते सन

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का, जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नू 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने, सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा, होर किसे नूं तंग नहीं करना।

0: महाराज का वचन मन के पठान नूं बन लिया रस्सियां नाल अते उस ब्राह्मण की स्त्री नूं भी नाल लेके आए है। आके महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करते हैं सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश देंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु
1: साहेब जी। क्यों पई तुरक सुबत जै सहज सुभाए, जाए अचानक घेरो पाए।
0: सहज सुभाव की बिना किसी डर तो बिना किसी खौफ तो ये साडा राज है। मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है, अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
1: किसो न आगे शस्त्र उठायो, गयो पठान सबंध चलायो।
0: क्योंकि हो सकता है रवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया, हो सकता वो इलाके दे विच बदनाम होवे। जबर खां पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे, ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
1: जिनी को एक तुरंग चढ़ायो, ਇਹ ਕੁਰੀਤ ਫਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓ।
0: ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ

0: महाराज की महिमा हो रही है, बहुत खुश ने सारे। ये अन्याय हुंदा सी धरती ते, डाकू चोर ठग राज लुटन वाले, उन्हां तो दुनिया नूं बचाया महाराज ने। पहाड़ियां ते तुरकां दे जुल्म तों बचाया, धीआं भैणां दी इज्जत बचाई। आईयों सारी दुनिया कहिंदी धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज।
1: जो पई एक दिन सतगुर चढ़वो चयो, बाजी के सेवक संग कयो।
0: अगला प्रसंग सुनाउंदे आ कवि जी कहिंदे, एक दिन सतगुरु महाराज ने चाहिया कि जिहड़ा नवां घोड़ा आया है, कपूरे ने भेजिया है, उहदे ते सवारी करनी चाहीदी आ। ख्याल करके सेवादार नूं

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लेके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेला हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े दे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहनी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़ बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नू हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नू भजाउणा, सूरज वल नू मूह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जाता है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो पुन जननी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नू भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नू भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धि सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नू भी पता लग गया कि मैनू किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदरे पछताउंदा सतगुरु महाराज घोड़े नू इस तरह घुमाउंदे होए आके उतरे महिलां दे सामने माता जी

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी जाके पैरी पैना करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया, बहुत

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है वो तो भी डरते, ये तो बड़े भारी जिन्हों बाहों के इन्ना जोर है, इन्ने बली ने, इन्ह के सिंह इन्ने योधे ने, सो इस करके बड़े भारी योधे हैं।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम कई बेर तीनों संग्राम,
0: इन्ह ने कई बारी अपने नाल जंग किया है, अपना जोड़ा देश कहलूर है या होर इलाके ने

0: करके इस तरह बैठ गए, ढिले पै गए हौली हौली। दस पिंड भी पिंड करद्या करद्या मेरा राज खोणगे, फिर थोड़ा खोणगे, फिर साढ़े सारे दे राज खोणगे। इस करके आपां नूं ढिले नहीं पैना चाहिदा।
1: नित प्रत दल सिंगन को आवै, लूट कूट कर मिट हट जावै।
0: हुण नेता प्रति सिंगां दे दल आउंदे ने साढ़े इलाके दे विच, लुट के फिर वापस मुड़ जांदे ने।
1: वाजत रहे बंदूक सदाई, मरे कि मारे फते बुलाई।
0: गोलियां दी आवाज आउंदी रहिंदी आ, कदे किते गोली चल गई, कदे किते मारते, कदे किते मारते। इस तरह ये हमेशा ऐसा कर्म करदे हन।
1: शाह पुकार सुनी इक सारी, लड़ियो आन लश्कर तब भारे।
0: हां एक बारी बादशाह ने साडी पुकार जरूर सुनी है, भारी फौजां भेजियां हन उसने एक बार।
1: अब कह जाए कहां कह शाहू, निर्बल अदक लखै मन माऊ।
0: सो इस करके हुण जे आपां हुण जाके कहने उत्थे बादशाह नूं, फिर वो जानेगा कि बहुत ज्यादा राजे जिहड़े ने निर्बल हो चुके हन।
1: बार बार की सुने पुकार, कै खिज परै करै बुरे यार।
0: बार बार जो आप इस तरह पुकार करांगे उन्होंने कोले, बादशाह खिजेगा अपने ते साडे नाल माड़ा कर्म करेगा भी तुसी इन्ना भी नहीं कर सकते। एक जाना हैगा उन्हां पांच चार हजार जाने हैगे आ, थोड़े कोल इन्नियां लखां फौजां ने, तुसी कख नहीं कर सकते। आओ झिड़कां पावेगा।
1: एक सौ जे गुर के सिख मरै, आए हजारों के सुन धरै।
0: जे महाराज का सौ सिंह शहीद हुंदा है, उहदी जगह ते हजारां दी गिनती च होर केस धारण करदे ने, भाव अमर छक लैंदे ने, ककार पहन लैंदे ने। इस तरह साडा उत्थे की मुकाबला है।
1: ने निपटे ने पाए पराजय।
0: सो इस करके ना निपटिए ते ना हारिए।
1: आन लाभ को लखै न काजै।
0: ओ नहीं जानदे कि हान की है लाभ की है। ओ ना साडे नाल निपटदे मुकदे ने, ना हारदे ने, ना ये समझदे ने कि हां लाभ की चीज है।
1: सुनो ग्रीशो करो उपाय।
0: सुनो ग्रीशो तो पाप पहाड़ी राजे हो, आपां हुण मिलके कोई यतन करिए।
1: यो बिगड़त कारज समदाए।
0: इस तरह तो अपना सारिआं दा काम जिहड़ा है वो बिगड़ जाएगा।
1: सुनत घुमंड चंद तब पाखा, को उपाय तुमने अब लाखा।
0: हां घुमंड चंद राजा कहण लग्या, चलो ये भी ठीक है कि तुसी सानू कहंदे हो, तुसी की सोचिया है, थोड़ा की इरादा है, आपां नूं की करना चाहिदा है।
1: बिना लड़न ते अपर ना को, मिले ना बचो छीन ले सो।
0: सो बिना लड़न तो होर तो कोई रस्ता नहीं है, इस करके वो सारा कुछ अपने तो खो लैणगे, ना कोई मिलना ना बचना।
1: प्रथम शाह टिग बने न जाना, सेना संच काल कमसाना।
0: पहला बादशाह को अपना जाना बनता नहीं है, पहला तो आप फौजा कट्ठिया करिए, फिर कमसाण का जंग करिए।
1: लड़बे कहो निप तरै जे आलस, राज करन की तरै न लालस।
0: सो इस करके जे राजा नूं कहने हैं आलस बड़ी करते हैं, इस करके तुसी राज की जिहड़ी हुण आलस है ना, ये ढिल मठ है, इहदा तुहानूं त्याग करना चाहिदा है।
1: रिप बस होए न दंड बहीना, वदै प्रताप सदंड अधीना।
0: क्योंकि दुश्मन कदे भी दंड तो बिना अधीन नहीं हुंदा, दंड देना चाहिदा है। अते जिहड़ी प्रजा है ना, ये प्रजा की भी एक गल हैगी आ,

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है युद्ध विच टिक के लड़ो हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम ए वर हो गया खालसे नूं भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं बहुत वीर रस अखां विच लालियां शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है भाव इहदा नाम ज्वाला बमणी दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईया।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली अपनी गलती का एहसास किया है उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह
0: एको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के
1: कितक हते को मार हटाए
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे
0: ये सारियां इको ही किस्म बरछे दियां ने तोमर ते सेला ते सांग सोटी का फर्क है उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस कग मारे
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने उह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर भेरे पबारे
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे
0: बहुत दीर्घ मार मची बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچھا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کہ جی میں

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यो कहने समाधि ला ली, गुर चरणा विच समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पर सुने कलयुगता का दास।
0: जेड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साखी नु सुने, कलयुगो दा दास बन जाएगा।
1: बाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओदे भज जाणगे, भगती ओदे हिरदे जागेगी, तन गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जेड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नु सोहना सुनाया इतिहास। आने वाला समा मुकदी गल मुकाईए भाई, अमर छको दाड़ियां, जेड़े कर दाड़ियां अपनी रख लो भाई। महाराज कहने आपे ही शूद्र बन जाते ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जाते ने, आपे मलेश बन जाते ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग का। एक ही वचन किया कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको, गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नू मनो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी सारिया चीजा तो विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच, अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग के जीवां नू शंके बहुते हुंदे ने। शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा नहीं, तो सारे नालों सौखा काम महाराज एक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे दे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भाई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। ये साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, ये कहण दा की फायदा, फिर की बनेगा, गात्रा पा के की बनेगा। अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों, इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारिया गल्लां छड़ दियो पर नहीं मानते, फिर भी कहिंदे आह गल क्यों, आ किवें, इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहिंदे जे सारे जने इको ही बचन मान लो, उस विच ही भला है। महाराज वो किहड़ा बचन